सोनानिया चमसी कड़वड़वनला उड़ी किया उंगा ननकना तो सो की लीवक तो सो पास अली।